गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हूँ मैं आपके साथ, जी हाँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10, यानी कि हो चुका है 10:09:30, और आप ट्यून कर चुके हैं अपना मन पसंदीदा चैनल, यानी कि 107 FM रेनबो। बिल्कुल दोस्तों, मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि मैं आपके आज हूँ आप सभी के साथ, आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। तो दोस्तों, आज क्या बातें होगी, कैसी बातें होंगी, बिल्कुल बातें करूंगी, क्योंकि मैं हूं आप सभी के साथ ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और हाँ, क्या विषय लेकर आई हूँ, किस मैटर पे बातें करूंगी, इन सब की जानकारी दूंगी, बिल्कुल दूंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो दोस्तों आज सुबह, जी हाँ, मुझसे ऐसी भयंकर भूल हो गई जिसकी सज़ा मुझे शायद अगले 7 जन्मों तक भुगतनी पड़ सकती है। हुआ यूँ कि आज ऑफिस, मतलब ऑफिस कहूँ यानी कि यहाँ आने के लिए बिल्कुल जल्दी से मैंने मम्मी से बस इतना ही पूछ लिया कि मम्मी मेरी वो नीली वाली टी शर्ट कहाँ रखी है, और भाई साहब आगे से जो जवाब आया उसने मेरी बची कुची नींद को वहीं पर कोमा में भेज दिया। क्योंकि मेरी मम्मी ने कड़कती आवाज में कहा, सब मैं ही ढूंढ कर दूं, एक दिन मैं इस घर में कहीं कहीं से दूर चली जाऊंगी ना, तब पता चलेगा तुम सबको। मतलब शर्ट खोई मेरी और अल्टीमेटम मिल गया कि मम्मी सीधे घर छोड़ देंगी। मैंने सोचा ये टैलेंट सिर्फ माता जी के पास ही है, यानी कि बैठे बिठाए मुझे आज का तो टॉपिक मिल गया। जी हाँ, और जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला भाई ये पूरे देश की मम्मियों की स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, क्योंकि कोई एक ऐसा दृश्य सुपर राइटर है जो हर इंडियन मम्मी को सेम डायलॉग्स की बुक सप्लाई करता है, चाहे वो कश्मीर की मम्मी हो या कन्याकुमारी की। यानी कि डायलॉग्स बिल्कुल सेम डिलीवरी के साथ आते हैं, जैसे कि पैसों का पेड़ लगा है क्या, या फिर रात भर फोन चलाओ और सुबह उठ कर रो, या फिर वो सबसे डरावनी वाली धमकी, रुक आज तेरे पापा को घर आने दे। तो दोस्तों आज की ये जो नॉन स्टॉप गपशप है ना, इसे यूनिवर्सल सच के नाम है। यानी कि आज हम मम्मियों के इन प्यारे तीखे और कभी ना भूलने वाले डायलॉग्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आप बस अपनी चाय की चुस्की का मजा लीजिए और हाँ, गपशप के साथ गीतों का भी मजा उठाइए। तो दोस्तों आपने दो गीत तो सुन लिए, और जैसे कि आप सभी को पता है यानी कि हमारा जो कार्यक्रम है नॉन स्टॉप गपशप वो चलने वाले ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आपका? मैं मालदा

0: दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार।
0: गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मेरा शुभ नाम है पारस कुमार पंडित, मैं चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: हाँ तो आप बताइए कि आपकी मम्मी का फेमस डायलॉग क्या था आप सभी के लिए?
1: मेरी मम्मी का सबसे फेमस डायलॉग था, बेटे पढ़ाई करो और आदमी बनो। पढ़ाई लिखाई से बेहतर और कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई पर ही मेरी मम्मी ज्यादा ध्यान देती थी।
0: तो आप भी अपने बच्चों के साथ भी इसी प्रकार की बातें तो करते होंगे?
1: जी बच्चों को तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ ही साथ थोड़ा बहुत खेलकूद का भी ध्यान देता हूँ।
0: बिल्कुल देना भी चाहिए, यानी कि आपकी अपनी मम्मी की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं आप दोहराते हैं, याद जरूर करते हैं कि काश उस वक्त मैंने बातें सुन ली होती, यानी मम्मी जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी।
1: जरूर जरूर, पढ़ाई लिखाई से मतलब सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई से ही ज्ञान का अनुभव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और पढ़ाई लिखाई रहने से मनुष्य मतलब एक आयाम प्राप्त कर सकता है।
0: इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: पढ़ाई लिखाई नहीं रहने से मनुष्य को थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न होती है।
0: हाँ। और उन बाधाओं से मुश्किलों को दूर करने के लिए पढ़ाई का होना बेहद जरूरी है।
1: जरूर जरूर, और साथ ही साथ बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल, बिना परिश्रम के तो कुछ नहीं मिलता।
1: प्रतियोगिता समय में बिना पढ़ाई और परिश्रम किए कुछ
0: नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए तो आपको पढ़ाई जरूरी है, चाहे आप कोई भी काम कीजिए, नीचे से ऊपर स्तर तक कोई भी काम में पढ़ाई लिखाई का होना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आप अगर मतलब शिक्षित रहिएगा तो आपको कोई कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। आज कहीं भी जाइए, आप रास्ते में निकलिए, चाहे कहीं भी जाइए, बैंक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, सब जगह ही पढ़ाई का ही जरूरत पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: रास्ते में निकलिए तो रास्ते इतने अभी मतलब मतलब इतने लंबे चौड़े रास्ते हुए हैं कि आप बिना पढ़े लिखे कहीं भी नहीं जा सकते हैं।
0: तो चलिए आप अपनी मम्मी की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में जरूर समझाएंगे।
1: मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा और खेलकूद पर ही ध्यान देता हूँ ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और
0: जी मुझे भी,
1: आप इसी तरह आते रहिए और हम लोगों से मुखातिब होते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
1: हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, बाय।
0: सेम टू यू, थैंक यू सो मच।
1: ओके।
0: तो दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की जड़ मम्मियों के पास सिर्फ एक ही होता है? आपको बुखार हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो या ब्रेकअप हो गया हो, यानी कि मम्मी के पास दुनिया की हर बीमारी का एक ही इलाज है और एक ही कारण, और वो कहना शुरू करेंगी।

और चलाओ फोन, यानी कि 24 घंटे उस डिब्बे में आँख गड़ाए हो रखोगे तो यही होगा। यानी कहीं ना कहीं ये डायलॉग तो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। और कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कल को देश की इकोनॉमी, यानी देश में अगर भूकंप भी आ जाए, मौसम खराब हो जाए, तो मम्मियों के हिसाब से उसकी वजह कहीं ना कहीं वो हमारे स्मार्टफोन ही होंगे कि बेटा तुम रात के 2 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर देखते रहोगे, तो इसीलिए आज बारिश हो रही होगी। यानी कि कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं सुनना हमें ही होता है या फिर हमारे फोन को। और उनका जो दूसरा ब्रह्मास्त्र होता है कि जब आप उनसे थोड़ी सी पॉकेट मनी मांग लें या कहें कि दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है, तो मम्मी का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है और वो कहेंगी, हाँ हाँ घर में तो पैसों के पेड़ लगे हैं। भाई मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया कि कहीं जाने के लिए मम्मी को इस टाइप के ही डायलॉग क्यों याद आते हैं। यानी कि इस डायलॉग के बाद पैर अपने आप पीछे खींच जाते हैं। यानी कि आपके घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होगा। सोचिए सोचिए, और हाँ जब याद आ जाए तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिए। और तब तक सुनते हैं एक बेहतरीन गीत और बने रहिए यूं ही मेरे साथ, यानी ये कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में अपनी दोस्त ज्योति के साथ। और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 10:34 और 58 सेकेंड।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं जीतू बात कर रहा हूँ रिश्ता से।
0: गुड मॉर्निंग जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी बिल्कुल जी, आपका जो प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा रहा है
0: जी, बहुत
1: अच्छे बज रहे हैं जो अभी बजा अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।
0: जी जी जी,
1: बहुत ही अच्छा लगा हमको ये सॉन्ग।
0: बिल्कुल, ये गीत और प्रोग्राम तो आप लोगों की फरमाइशों पर ही होता है, बिल्कुल, ताकि आप सब खुश रहे और यूं ही सुनते रहे हमारा कार्यक्रम।
1: बिल्कुल जी, और साथ एफएम रेनबो ऐसा चैनल है जिसपे हमको सभी प्रकार का गाना सुनने को मिल जाता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: पुराने तक। और आज का जो टॉपिक है
0: कि मम्मी की जो डायलॉग होती है, बिल्कुल
1: जी बिल्कुल जी हाँ, जो मम्मी की जो जैसे कि मेरा डायलॉग है तो सबसे पहले हम लोग बचपन में छोटे थे तो उस समय हमको बोलते थे कि तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब खेल कूद सब में मतलब ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब तो बोलते थे। लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब बोलते हैं कि काम धंधा में ध्यान दो और ये सब जो है खाली बैठना ये सब मतलब करना, मतलब
0: एक तरह से
1: तो अभी का डायलॉग ये है, आप पहले का डायलॉग वो बोला था।
0: और जब बाहर कुछ खाने के लिए अगर जिद करो तो आपकी मम्मी कुछ कहा करती थी?
1: जी बिल्कुल जी, जैसे कि हम लोग जैसे छोटे में बच्चे में मतलब
0: बिल्कुल सभी हाँ
1: तंग करते थे, जैसे कि मम्मी जैसे गर्मी के दिन में तो होता है आइसक्रीम, छोटे छोटे थे उस समय तो बोलते थे आइसक्रीम हमको चाहिए मम्मी, तो बोलते कि ये सब खाने से क्या तबीयत खराब हो जाएगा।
0: बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सब बातें जो होती है जो आज जो है हम लोग हमें लगता था उसका घिसी पिटी डायलॉग है, लेकिन कहीं ना कहीं आज लगता है कि ये तो बिल्कुल सही बातें हो रही थी।
1: हाँ जी बिल्कुल जी, आप जब बड़े हो गए हम लोग तो हम लोग सोचते नहीं, मम्मी जो बोलती थी वो बात थी एकदम सही है और तबीयत मतलब शरीर के लिए भी ठीक ही बोलती थी हम लोग, लेकिन उस समय तो हम लोग बच्चे थे, उस समय क्या हम लोग जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: हम लोग तो वही जानते थे, नहीं हमको आइसक्रीम खाना है तो खाना ही है,
0: खाना है बिल्कुल, नहीं तो पिज्जा खाना है, मोमोज खाना, अभी के बच्चे जैसे करते हैं। बिल्कुल
1: बिल्कुल, अभी जैसे कि इतना जो गर्मी पड़ रहा है तो
0: जी
1: अभी भी मन कर रहा है, लेकिन हम उतना अभी बड़े हो गए तो हम समझदार हो गए तो हम समझते हैं कि नहीं तो समझ के ही खाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अब जैसे कि गर्मी से हम कहीं से आ रहे हैं और जैसे कि ठंडा जल हुआ मतलब पानी हुआ अब पी ले रहे तो इससे आपका तबीयत खराब हो जाता है, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेकर अपना घर में आकर आराम से बैठ कर पानी पिए,
0: यानी कि वही
1: मैं यही बोलना चाहूंगा आज के टॉपिक के बारे में। जी
0: जी
1: थैंक यू
0: सो मच, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए,
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला 10:48:05, यानी कि घड़ी की सुई जो है धीरे धीरे अपने समापन की ओर यानी कि कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन अभी भी टाइम है दोस्तों और बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलेगा ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

दोस्तों ये जो मम्मी के डायलॉग्स हैं ना कि जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, समय से घर आ जाना या अपना कमरा साफ रखो, ये सिर्फ ताने नहीं, ये असल में उनका हमारे लिए फिक्र करने का एक तरीका है, हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाने का और अपने बेइंतहा प्यार जताने का एक अनोखा देसी तरीका है। हम चाहे कितने बड़े हो जाए, किसी कंपनी के CEO बन जाए या खुद पेरेंट्स बन जाए, लेकिन जब तक सुबह सुबह मम्मी की वो मीठी सी डांट सुनाई नहीं देती ना, तब तक दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। सच तो यह है कि जिस दिन मम्मी घर पर ना हो वो घर घर नहीं लगता, बिल्कुल सूना और बेजान हो जाता है, और उनकी ये ताने हैं जो घर में रौनक बनाए लगते हैं। तो दोस्तों और इसी के साथ वक्त हो चला है कि आज के शो यानी कि नॉन स्टॉप गपशप को यही समेटने का, यानी कि आज मम्मियों की जो ताने और उनके प्यार पर जो बात करके वाकई सुबह का मिजाज

0: एकदम मजेदार हो गया। उम्मीद है कि आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आई होगी। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही कि अलविदा कहने का, लेकिन याद रखिएगा मम्मी की डांट में ही असली आशीर्वाद छुपा है। तो आज घर जाकर उन्हें थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मैं हूं आज आपकी होस्ट अंदोज ज्योति। अब आप सभी से लेती हूं इजाजत, फिर मुलाकात होगी जल्दी इसी आशा के साथ। आप सभी से लेती हूं, कहती हूं अलविदा, जाते जाते एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए छोड़े जाती हूं। तो दोस्तों, आप यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल खिले।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेनबो पर। परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति में आज हम लेकर आए हैं अन्नपूर्णा योजना। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है और लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में 3,000 रुपये प्राप्त किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का इस महीने से औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है और शहरी विकास मंत्री और महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री ने इस योजना का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर उपस्थिति अपनी रखी थी। पहले चरण में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। शुरुआत में 28 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में ये राशि जमा की जाएगी और हर 7 दिन बाद सूची को अपडेट किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों के कारण ही ये योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हुआ है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के उद्घाटन के तुरंत बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे जाएंगे। इसी प्रकार कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्राप्त किए जाएंगे। योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए लाभार्थियों को 90 दिन का समय दिया जाएगा और 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। तो ये थी अन्नपूर्णा भंडार योजना के बारे में कुछ एक बातें। सुनते रहिए, साथ रहिए स्टूडियो की घड़ी में। दोपहर के 3:03 आप सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का। मैं हूं पॉपी आपके साथ और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा दोपहर 4 बजे तक।

0: सबका स्वागत।
1: जी हाँ दोस्तों, सबका स्वागत करते हुए हमने सुनाया आपको 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है से ये खूबसूरत गाना जिसे गाया था विशाल ददलानी और नेहा भसीन ने। फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है, आपको पहले ही बताया। और आपको बता दूं कि ऐसे गाने बजते रहेंगे और आपको हम सुनाते रहेंगे, साथ ही बहुत सी मज़ेदार बातें। तो सुनते रहिए, साथ रहिए। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना केयर लेते रहिए, पानी को पीते रहिए और धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग से जानकारी मिली हुई है कि जितना भी हो बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। और अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहिए और खूब सारा पानी पीते रहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा। फिलहाल अगला गीत अरिजीत के आवाज़ में, फिल्म का नाम डंकी।

पल की बातें बताते हुए 3:19 और आपने बैक टू बैक दो गीतों को सुना। एक तो हमने सुनाया डंकी से, दूसरा गदर 2 से। जी हाँ, अरिजीत सिंह की आवाज फिल्म डंकी से और विशाल मिश्रा नितिन मोहन की आवाज में आपने सुना फिल्म गदर 2 से। और आपको बताना चाहेंगे कि मुड़ जाना ही ठीक होगा शायद नींद आ जाए, मुड़ जाना ही ठीक होगा शायद नींद आ जाए, जाग जाना ही ठीक होगा इधर उधर की बातों को छोड़ देना ही ठीक होगा। कौन ता उम्र साथ चला है, कौन ता उम्र साथ चला है, खुद चलना ही ठीक होगा। हरदम है मुश्किल होता है, जी हाँ हरदम है मुश्किल होता है, ना कहना ही ठीक होगा, चेहरा एक दिन दिखता है, संभले रहना ही ठीक होगा। और वक्त बदल कर, कि वक्त बदल कर रहता है, थोड़ा सहना ही ठीक होगा, लेकिन याद भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि याद रहने से बहुत सी चीज़ें जो सुलझी हुई नहीं है, जो उलझी हुई हैं वो सुलझ जाए। इसलिए आपको याद रखना है नंबर 8282082820। एक बार फिर से बताओ, 8282082820, यानी कि 8282082820। ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि अब की बार आपकी सरकार आपके साथ है की शुरुआत हो चुकी है, और अब आपको अगर किसी भी समस्या से सुलझना है, अगर हेल्प चाहिए, तो इस हेल्पलाइन नंबर को घुमाएं और सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की अगर बाधा हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप सीधा इसी नंबर पर 8282082820 पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, और आप अपनी शिकायतें इसमें दर्ज कर सकते हैं। और साथ ही एक वेबसाइट भी दिया हुआ है, अगर उसमें अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आप अपने समस्या को इस वेबसाइट पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका नाम है, इसका जो रजिस्टर है वो है asapp@wb.gov.in। एक बार फिर बता दो, asapp@wb.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। और ये केवल आम इंसानों के लिए बनी है, और इससे आम इंसान पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल हम आपको एक गाना सुना सकते हैं, और आपको

समीर अंजान का लिखा ये गीत हमने आपको सुनाया, जी हाँ, फिल्म सनम तेरी कसम से, और सनम के तेरी कसम का ये टाइटल ट्रैक। और इस गीत में कहीं एक जगह कहती है पलक मुच्छल, तुझे देखते ही आंखें हुई नम, यानी कि सोचिए कितने इमोशंस, कितना झुकाव, कितना फीलिंग्स है कि तुम्हें देखते ही आंखें नम हो जाती हैं। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितनी आशिकी, सब कुछ मिलाकर वो सारा कुछ आंखों से निकलता है क्योंकि प्यार है। लेकिन लेकिन ऐसे प्यार से ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि आए दिन बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। बहकिए मत, इश्क ज़रूर कीजिए लेकिन बहकिए मत, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोग बिल्कुल सामने आपको नज़र आएंगे एक, लेकिन दिल से होगा कुछ और जो आपके समझ में नहीं आ सकता है। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी, बिल्कुल असली ठग जैसा एक किस्सा हुआ है। और बस फर्क इतना है कि यहाँ पर लिंग बदल गया है। फिल्म ठग में संध्या राय द्वारा निभाया गया किरदार शादी के नाम पर लड़कों को धोखा देती है, और एक ऐसा ही केस सामने नजर आया है। एक पुरुष ठग जो उत्तर 24 परगना के नईहाटी में पकड़ा गया है। इसने फर्जी नाम से कम 15 शादी की है। जी हाँ, हम नाम नहीं बता सकते, नाम बताना मना ही है, इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक छद्म नाम से उसने कई महिलाओं को धोखा दिया और आखिरकार वो पकड़ा गया। नईहाटी की एक युवती की शिकायत पर पुलिस स्टेशन ने इस पुरुष को गिरफ्तार किया। और फिर तो मत पूछिए, जो किस्सा सामने आया वो एक ऐसा बंदा है कि एक वैवाहिक वेबसाइट पर अपने नाम से अपना प्रोफाइल बनाया और इस प्रोफाइल से अलग अलग महिलाओं से संपर्क करता था। आप आजकल देखते ही होंगे बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप शादी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वो उन साइट्स का, उन मैट्रिमोनियल साइट्स का बहुत बुरी तरह से लोग कह सकते हैं कि सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जान पहचान करीबी होती तो वो शादी का प्रस्ताव रख देता था और इन्हीं मैट्रिमोनियल साइट से उसका खेल शुरू होता था। आरोप ये है कि आशीर्वाद के समय वो पैसा ले लेता था और इस तरह लाखों रुपए का उसने गबन किया। और ये भी आरोप है कि लड़की के परिवार से गहने तक हड़प लेता था। जी हाँ, एक बड़ी कार कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताता था अपने आप को और कहता था कि उसकी जो वार्षिक वेतन है वो 1.5 करोड़ रुपए है। नईहाटी की इस युवती ने बताया कि उसकी मुलाकात इस बंदे से एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए हुई। 3 महीने की जान पहचान के बाद उसकी दोस्ती गहरी हो गई। धीरे धीरे उसने एक भावात्मक दबाव डालना शुरू किया और उससे पैसे मांगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गहने भी चाहिए थे, तो उसने 85,000 रुपये नकद दिए और सोने का एक कंगन। जरा सोचिए सोने का भाव क्या है।

और ऐसे में सोने का कंगन उस लड़की ने, उस युवती ने भरोसा करके इस बंदे को दे दिया और इस उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बहुत जल्द कर लूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो धोखा देने वाला होता है, एक बार धोखा देने के बाद फिर उसका तो कोई खबर ही नहीं। और युवती ने बताया कि एक दिन उसे बताया कि उसके चाचा की मृत्यु हो गई है और उसलिए भी उसे पैसे चाहिए और किसी खाते में उसे पैसे भेजने हैं। लेकिन ये जो युवती थी वो बिल्कुल बहुत ही समझदार थी, सुलझी थी, और उसने क्या किया, बोला कि ठीक है, मेरे चाचा तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं देंगे बल्कि तुम्हारे चाचा के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट रखा है और उसमें एक सोने का चेन भी है, तो ये तुम घर पर आकर अपने चाचा के लिए ले जाओ। और ये सुनकर वो उसके घर आया और इस युवती ने बहुत ही अकलमंदी दिखाई। उसने पुलिस को पहले ही इस घटना की सूचना दे दी थी और वो आते ही उसे पकड़ लिया गया। तो चलिए, ये तो मान लेते हैं कि इस युवती ने अपनी अकलमंदी दिखाई, अपनी चतुराई दिखाई, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम मौके में इस तरह से फंस जाते हैं, ऐसे अपने आप को उलझा लेते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम आगे करें तो करें क्या। इसलिए अगर किसी से भी आपको दोस्ती बढ़ानी है तो पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन पर नज़र डालें, पहले उसका जितने भी वाइटल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके नाम के जितने भी दस्तावेज़ हैं, उन पर ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि ऐसे किस्से आए दिन होते हैं और आप इंसान को देखकर समझ नहीं सकते हैं कि सामने वाला कैसा है। हम नहीं कहते कि सबको शक के नज़र से देखिए, लेकिन हाँ, सबको आप, जिससे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भी आप बातें कर रहे हैं, जिससे भी आप रिश्ता जुड़ना चाहते हैं, ये केवल रिश्ता जुड़ने की बात नहीं, अगर आप दोस्ती भी करते हैं तो दोस्ती में भी एक ट्रांसपेरेंसी रखिए कि आप उसके दस्तावेज़ों को देखें, देखकर उस पर भरोसा करें। फिलहाल एक खूबसूरत गीत अंकित तिवारी की आवाज़ में, सुनते रहिए, साथ रहिए। स्टूडियो की घड़ी बोल रही है 3:39 और 39 सेकेंड, और कुछ देर हम हैं आपके साथ। आप सुन रहे कार्यक्रम 3 का तड़का, खूबसूरत गीतों का साथ रहेगा क्योंकि ये है 107 FM रेनबो और मैं हूँ पॉपी आपके साथ।

आंटी शर्मा की दुल्हनिया से सुना आपने ये खूबसूरत नगमा, और आज आज तीन का तड़का में मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट गाने सुना रही हूँ, रोमांटिक गाने सुना रही हूँ भाई, इसलिए क्योंकि बॉडी में ना हरकत हो नहीं पा रही है, टेम्परेचर इतना हाई है 37 डिग्री, 38 डिग्री एंड फील्स 47 डिग्री, इतनी उमस, इतनी परेशानी, ऐसे में क्या तड़का लगाऊँ और क्या आपके एनर्जी लेवल को मैं बढ़ाऊँ, मैं यही सोच कर आज ज़रा आपको सॉफ्ट सॉफ्ट गाने सुना रही हूँ, और सुनते रहिए कुछ बातें भी बता रही हूँ। फिलहाल ये बात सुनकर आपको जरूर गर्मी आ जाएगी। जी हाँ, रामचरण को 100 और जानवी को 6 मिले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या 100 क्या है, 6 क्या है, तो आपको बता दें कि ये 100 और 6 करोड़ हैं। जी हाँ, रामचरण की फिल्म पेडी 4 जून यानी कि आज 2026 को विश्व स्तर पर रिलीज हो चुकी है, जबकि आपको बताएं कि रामचरण की ये ड्रामा फिल्म तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने को है। पेडी के लिए रामचरण ने 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम ली है। RRR के बाद तेलुगु स्टार पेडी में एक दमदार पहलवान के अवतार में नजर आएंगे, जो इस प्रोजेक्ट के लिए उनका अब तक का सबसे अलग रोल है। और इस बीच खबर ये भी है कि लीड एक्ट्रेस के रोल में जानवी कपूर, 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है जानवी कपूर को। खबरों के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू ने फिल्म पेडी के लिए 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। भाई करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ के नीचे तो कोई बात ही नहीं है। और निर्देशक की ये दूसरी फिल्म होने के बावजूद ये फीस बहुत अधिक मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक मिर्जापुर के एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने तेलुगु पैन इंडिया फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपए की फीस ली है, और फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले बोमन ईरानी ने कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए लिए। यानी करोड़, मैंने कहा ना करोड़ करोड़, भाई करोड़ की बात सुनने से ऐसे ही बॉडी में ना गर्मी आ जाती है। वैसे अगर पूछिए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं। आर यू कन्फ्यूज्ड? तो मैं बता दूं, मैंने इसको देखने के पहले मैंने कंफर्म कर लिया था कि 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं। फिलहाल मैं करोड़ आपको दिखा पाऊं ना पाऊं, लेकिन हाँ एक खूबसूरत नगमा आपको जरूर सुनाऊंगी, एंड डेफिनेटली दैट्स बीन पिक्चराइज्ड ऑन जानवी कपूर, फिल्म का नाम रूही। सुनते रहिए, साथ रहिए, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का।

चल, जानवी कपूर की बात और रामचरण की बात तो हमने करी, साथ में आपको बताएं कि रणवीर सिंह भी अब थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल डॉन 3 के विवाद के बाद उन पर एक बैन लग गया था, लेकिन जी हाँ, फरहान अख्तर और उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। होता ना कभी कभी बर्तन टकरा जाते हैं और आवाज़ होने लगती है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ हुई और फिर धीरे से आपस में सुलह हो गई और ये मामला सुलझ गया। और अब रणवीर सिंह पर जो बैन था वो हट चुका है और अब उन्होंने एक गहरी सांस ली है राहत की। फिलहाल उनके सांस को वो फील करें, हम तो गहरा हुआ सुनाते हैं आपको फिल्म धुरंधर से। सुनते रहिए, साथ रहिए। और हाँ, बता दूं कि इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, क्योंकि आपको सुनना है अगला कार्यक्रम जो कि बांग्ला में होने वाला है और हम एक बार फिर आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। आपको मालूम है जी हाँ, 5:20 पर एक बार फिर हम आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। आपको मालूम है, जैसा कि मैंने कहा, FM गोल्ड पर, जी हाँ, 100.1 FM गोल्ड पर लेकर कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। फिलहाल सुनते रहिए ये ट्रैक फ्रॉम द फिल्म धुरंधर एंड विद दिस पॉपी आपसे नमस्कार कहती है एंड साइनिंग आउट राइट नाउ फ्रॉम दिस चैनल आफ्टर द सॉन्ग।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।

श्री 420 के खूबसूरत गीत से कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है और आपको बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं छाया लोक और बृहस्पतिवार को आप सुनते हैं नज़ारा फिल्मों का। आज के दिन हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नज़ारा पेश किया जाए फिल्मों के पिक्चराइजेशन के माध्यम से। वैसे दोस्तों ये तो तय है कि आप इन कुछ दिनों में चिलमिलाती धूप, पिचपिचाती गर्मी, पसीनेदार उमस से बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गए हैं। तो आपको बता दें कि बस मौसम बदल चुका है, बदलने वाला है और हम आगमन कर रहे हैं मॉनसून का। वैसे इस आगमन से पहले आपको बता दूं कि मौसम विभाग से एक जानकारी मिली है और इस जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग जिले के कुछ हिस्सों में और साथ ही कुछ हिस्से नदिया जिले के अंतर्गत अगले 2 से 3 घंटे मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ में बिजली और बिजली कड़कने की भी संभावना है और हवा की जो गति है यानी आंधी और तूफान की पूरी संभावना है और हवा की जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर के रफ्तार से बहने वाली है। एक बार फिर आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी, नॉर्थ दिनाजपुर, दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों के साथ साथ नदिया जिले में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से भारी बारिश की संभावना है। साथ में आंधी और तूफान के संकेत भी मिल रहे हैं और हवा की जो रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे में बहने वाली है और ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित स्थानों में बनाए रखें। तो ये थी

बैक टू बैक आपने दो गीतों को सुना, जिसे हमने लिया शहजादा और फिल्म छलिया से। जी हाँ, और जाहिर सी बात है आज हम बात कर रहे हैं बारिश के ऊपर पिक्चराइज किए हुए गीतों को, और इन गीतों को हम आपको सुना रहे हैं। वैसे बता दें कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको घुमाना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा। वैसे घुमाना तो काफ़ी दिनों से बंद हो गया, शायद मैं कुछ गलत कह रही हूँ। हाँ, घुमाना नहीं है आपको, पंच करना है आपको, दबाना है आपको, प्रेस करना है 2213-1341। और अगर आप लैंडलाइन से कर रहे हैं तब तो ये नंबर, और अगर मोबाइल से करते हैं तो 033 ज़रूर डायल कर लीजिएगा, ताकि आप हम तक आसानी से पहुंच जाए। वैसे आपको बता दें कि भारत में मॉनसून का मौसम फिर से आ चुका है, और स्वाभाविक रूप से हवा में प्यार की महक जो है वो घुल गई है। आखिरकार हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं क्लासिक बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ बारिश के गीतों को, और हम सभी इन पलों को बहुत पसंद करते हैं। छाते के नीचे प्यार से लिपट जाना, गीले बागीचे में पानी से खेलना, या फिर भीगी हुई साड़ी में जीनत अमान। ऐसा लगता है कि जब बारिश में गाना बॉलीवुड रोमांस का प्रतीक बन गया है, और किसी नए गाने को पेश करने का एक ये शानदार तरीका होता है। लेकिन ये चलन रातों रात नहीं आया, और वास्तव में बदलती सांस्कृतिक अपेक्षाओं के साथ साथ फिल्मों में बारिश का अर्थ भी समय समय के साथ बदल दिया गया। और आइए तो फिर बारिश के गीतों को, जी हाँ, बॉलीवुड के बारिश के गीतों को आज की शाम एंजॉय किया जाए। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। छाया लोक पॉपी है आज आपके साथ, ओनली ऑन 107।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम।
2: हम तो कहेंगे बारिश की कसम और ऐसे गानों की कसम। लगता है कोई हम तक आ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो।
3: हाँ, मैं अरूप बोल रहा हूँ।
2: हाँ अरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए कैसे हैं।
3: बारिश का तो बहुत गाना है, हम तो दो गाने का मैंने अभी मैंने ख्याल आता है। जो गुमनाम का गाना है ना, जाने चमन सोला बदन सरदा मोहम्मद रफी सरदा,
2: गुमनाम फिल्म से जाने चमन, और क्या ख्याल आता है। और आपने कहा ना मुझे दो
3: अब के सावन में भी डरे,
2: अरे वाह,
3: वो गाना तो बारिश का गाना।

0: जी हाँ,
1: बहुत अच्छा आर्ट डिपार्टमेंट का म्यूजिक है।
0: अच्छा वैसे ये बताइए अरूप जी, अभी अभी अभी जब तक अभी तक जो मैंने जितने भी गानों को सुनाया है, चार गाने हमने सुना दिया, तो क्या फील आया, आपको अच्छा लगा?
1: हम तो पुराना गाना का बुक का है ना, ओल्ड एज हो गया 64।
0: अच्छा भूखा है, अच्छा पुराने गानों का आप भूखा है, तो हम आपके भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप आपका दिल दिमाग पेट के साथ साथ सब कुछ भर गया होगा, ठीक है। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे अरूप जी, इन्होंने दो गानों का मतलब याद दिलाया अपने जहन से, अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे, जरूर बजाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बारिश की जो कहानी है, सच पूछिए, अब तक मैंने आपको चार गानों से रूबरू करवाया, एंड ट्रस्ट मी, मन्ना दे, मुकेश, किशोर कुमार, रफ़ी, चारों दिग्गज गायक, जी हाँ, अपने नायक के साथ साथ इन गीतों को गाया। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ये इतना इमोशनल टॉपिक है, ये इतना दिल को छूने वाला, स्पर्श करने वाली ये सीक्वेंस है, बारिश के सीक्वेंस, जो हर फिल्म में, तकरीबन हर एक फिल्म में अगर रोमांस का सीन हो तो ज़रूर इसको रखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से गीतों का साथ रहेगा, बने रहिए, साथ रहिए। और जैसा कि इन्होंने कहा, गुमनाम फिल्म का गीत जाने चमन, शोला बदन, शारदा और मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनाने जा रहे हैं 107 FM रेनबो पर।

ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन, एक अमेजिंग कंपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, 1965 में ये फिल्म बनी थी। गुमनाम, हसरत जयपुरी का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, लेकिन लेकिन इस गीत में रफ़ी साहब ने जो इमोशंस ढाल कर दिया है ना, वो कहते हैं बाल्टी बाल्टी इमोशंस है इस फिल्म, इस गीत में। एंड द वे ही सैंग द सॉन्ग, इतना सिजलिंग, इतना सेंसेशन, इतनी मादकता मुझे शायद ही किसी और गीत में मिलती है। बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस गीत को गाया, और ये जो मादकता, ये जो एक जो फीलिंग्स है, ये बिल्कुल उजागर करती है वो बारिश के मौसम में अपने महबूबा के साथ होने का, वो कहते हैं ना, वो परिवेश, वो माहौल, वो मिजाज। तो ये था, ऐसा था उनका गायन शैली। एनीवेज, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और खूबसूरत गीत हम सुनाएंगे। आपको बता दें, इस गीत में जीनत ने जो परफॉर्मेंस दिया था, आपने देखा होगा कई अधिकांश नायिकाएं, अधिकांश फिल्मी हीरोइंस ने अपने आप को इस सीक्वेंस में ढाल कर दिखाया, लेकिन वो छोटे छोटे बालों के साथ वो खेलना, वो पानी के छींटों के साथ पानी को पाँव के साथ फेंकना और वो उछलना, वाकई अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर सोशल साइट में जाकर इस गीत को देखिएगा और फील कीजिएगा द रियल मॉनसून।

1974 में बनी रोटी कपड़ा मकान से आपने सुना ये गीत, और ये गीत उन जोड़ों की भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें बारिश के दौरान एक दूसरे से रहना पड़ता है। एक प्रकार की विरह जो बेबसी उपजता है वो बताया गया है इस गाने में, खास करके नौकरी के चलते, अपने व्यवसाय के चलते जिन प्रेमी जोड़ों को अलग रहना पड़ता है। जीनत अमान ने भले ही देहाती शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हो, ये तो भाई गीतकार के मतलब शब्द थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इस गीत में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में वो लाइन, अंबर पे है रचा स्वयंवर फिर तो क्यों घबराए। बहुत अच्छा लगता है ये गीत मुझे, और इसीलिए लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द फिल्म मंजिल। ये भी एक बेहद खूबसूरत गीत है, बेहद कहते हैं ना चार्ट बस्टर्स में इस गीत को पाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत और बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए ऐसे गीत, और वो कहते हैं ना एंजॉय कीजिए द मॉनसून द बारिश हमारे साथ, ओनली ऑन 107।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों बैक टू बैक आपने दो गीतों को सुना। हमने सुनाया एक गीत फिल्म मंजिल से जो कि रिलीज हुई थी 1979 में, और दूसरा गीत आपने सुना फिल्म चांदनी से। जो पहला गीत हमने आपको सुनाया अमिताभ बच्चन और ये जो गीत बनी थी ये मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया हुआ गीत अपने संगीत के शुरुआती दौर में मुंबई की सड़कों पर समुद्र तट पर आए थे। और आपको 40 साल पहले की शहर की वो झलक दिखता है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 40-45, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि 21 साल और इधर 25 साल, इट्स मोर देन 45 ईयर्स। जी हाँ, 45 साल पहले बना ये गीत आज भी बड़ा ही खूबसूरत फील देता है। और इस गाने के दो संस्करण हैं, एक किशोर कुमार द्वारा गाया गीत और संयोगवश पूरी तरह से घर के अंदर फिल्माया गया था, और दूसरा जो गीत लता मंगेशकर के संस्करण में था उसमें मुंबई के रेन को पूरी तरह से दिखाया गया था। जी हाँ, वो पूरा सीक्वेंस बॉम्बे का था, बॉम्बे की गली कूचे, और इनफैक्ट जो वहाँ का जो स्टेशन है विक्टोरिया टर्मस, जो आज के नाम से जाना जाता है, और साथ में पूरा जो वो लहरों का जो सीन, बहुत ही खूबसूरती से इसको पिक्चराइज किया गया था। और इनफैक्ट दो एक जोड़ा जो इश्क में मोहब्बत में पूरी तरह से मुंबई की बारिश से भीगा हुआ है, प्यार से भीगा हुआ है, उस तरह से इसे दिखाया गया था। दूसरा जो गीत हमने आपको सुनाया, लगी आज सावन की झड़ी थी, इस गीत में थोड़ी सी अगर आप देखें तो एक उदासी की झलकियां आपको दिखती हैं। जी हाँ, बारिश का गीत बेहद उदास और भावपूर्ण है। ये बारिश से जुड़ी अतीत की यादों को झकझोरता है और ये यादों की कहानी की एक ऐसी यात्रा पे लेकर जाता है जिसे आप वर्तमान में नहीं पा सकते हैं। वर्तमान और अतीत का एक बहुत ही सुंदर मेल किया गया है इस गीत में, और वही एक कोमल संकेत जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है, कुछ ऐसा ही फीलिंग्स दिया गया था इस गीत में। फिलहाल बने रहिए, साथ रहिए, एक और खूबसूरत गीत से हम आपको परिचय करवाएंगे। आपको मालूम है और बात बता दें कि ये जो गीत है ये लता मंगेशकर के आवाज़ में है, और साथ में जो आवाज़ है वो भी आप जानते हैं, सुरेश वाडकर की आवाज़। फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

वाडकर की आवाज के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और संतोष आनंद के गीत ने कमाल किया है। एक फिलॉसफी समझ में आती है इस गीत में, एंड रियली सच बताऊं बहुत दिल को स्पर्श करता हुआ ये गीत। वैसे कार्यक्रम का पहला घंटा समाप्त होने को जा रहा है, यानी कि हम बिल्कुल अंतिम कगार पे हैं, तो आइए पहला घंटा को अंजाम देते हुए सुनते हैं मोहरा फिल्म का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में वो खूबसूरत गीत जो आप भूल ही नहीं सकते हैं। और जब भी बारिश की बात होती है तो टिप टिप बरसा पानी आपको याद आता है। इस गीत के साथ हम मुड़ेंगे कार्यक्रम के दूसरे घंटे की ओर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: कार्यक्रम के दूसरे घंटे में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक। हर बृहस्पतिवार को हम लेकर आते हैं नजारा फिल्मों का, और आज जो नजारा हम पेश कर रहे हैं वो है आपके दिल को छूने वाला, क्योंकि परेशान है आप। वो कहते हैं ना, अब सहा न जाए ये गर्मी, हाय कहीं दूर चली जाए। लेकिन ये जाएगी कैसे? इसके जाने का बस एक ही उपाय है कि आपको मॉनसून को पाना है। जी हाँ, और इस मॉनसून के पाने के ललक को, चाहत को हम आज फील कर रहे हैं अपने गानों के माध्यम से, अपने बॉलीवुड के गानों के माध्यम से। तो बने रहिए, साथ रहिए। फिलहाल पेशे खिदमत है वो गीत, जी हाँ, जिसमें नसरुद्दीन शाह एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से रेन की आवाज़ें कहते हैं और छात्र भी बिल्कुल मिलकर उन्हें कुछ संदेश देते हैं। वो क्या संदेश है वो आप सुनिएगा कुमार शानू की आवाज में। फिल्म का नाम सर।

0: मुझे इस फिल्म की केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आई थी। टीचर और स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप था वो ज़रा मेरे मेरे सर के ऊपर से निकल गया था। मुझे तो ये लगता है भाई, ऐसा अगर रिलेशनशिप रहा स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच, तो जाहिर है आगे क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, लैला मजनू, शरीफ फरहाद, रोमियो जूलियट की कहानियाँ फिर से और ज़्यादा उजागर हो जाएंगी। वेल, सुन बरसात की धुन हमने सुना, अब सुनते हैं हमारे कॉलर को, देखते हैं कौन है हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग, किसकी आवाज़ है ये?
1: जी, मैं पारस पंडे चुजरा हुगली से बोल रहा हूँ। आपको सब प्रेम प्रणाम।
0: नमस्कार, आपका बहुत तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। कहिए, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी बरसात के गाने बजाए, इससे मौसम भी खुश हो गया और बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब मेरे इन गीतों को आप तक पहुंचाते पहुंचाते शायद मैं बारिश भी आप तक पहुंचा दूं, राइट?
1: जी, मौसम भी उसी तरह बारिश का ही बन चुका है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर एकदम ठंडी हवाएं चल रही है और बारिश के तरह ही मौसम हो गया है। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होने से और मौसम खुशहाल हो जाएगा।
0: चलिए, और मेरा और उम्मीद है। हाँ, बोलिए।
1: तो आपने जितने भी बरसात के गाने सुनाए, बहुत ही बेहतरीन गाने सुनाए, और मेरे ख्याल में बरसात के गानों में एक है ये दिल लगी पिक्चर का देखो देखो बरसात की धुन, और नाजायज पिक्चर में है बरसात का मौसम।
0: चलिए, मैं कोशिश करूंगी। बरसात का एक इतना बड़ा थीम है, इसे 2 घंटे में सीमित तो किया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक से एक खूबसूरत गीत आपके नज़र करूं। तो चलिए, बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। अभी भी तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा हम हैं आपके साथ, ओनली ऑन 107 एंड हियर कम्स द नेक्स्ट सॉन्ग। ये गाना किसी फिल्म का नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गाना एक एल्बम से हमने लिया है और इस गीत को गाया है शुभा मुडगल ने। और सच पूछिए, ये गीत उन्हीं पर पिक्चराइज भी किया गया था, और इस गीत में उन्होंने इतने सारे इमोशंस डाले हैं, और उनका जो गायन शैली है, द आर्ट ऑफ सिंगिंग, वो बिल्कुल निखर कर आया है। आइए एंजॉय करते हैं ये वाला गीत। दो इट्स नॉट अ फिल्मी सॉन्ग, लेकिन फिर भी इसे हम अपने सूची में ज़रूर लिस्ट करेंगे, यानी कि एनलिस्ट करेंगे। तो सुनते रहिए ये आवाज़ शुभा मुडगल की, ओनली ऑन 107।

काली काली रातें ये बदरवा बरस जाएगा, कि काली काली रातें ये बदरवा बरस जाएगा, गली गली मेघा ढूंढेगा और पलट कर तरस जाएगा। ये बोल ऐसे बोल गुलजार के सिवा कोई लिख ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, गुलजार का और यार रहमान का ये जो कॉम्पोजिशन था, यूनिक कॉम्पोजिशन हम इसको कह सकते हैं। और इनफैक्ट जो स्टोरी लाइन थी वो भले गुजरात की थी, लेकिन इस गीत में, इसके पिक्चराइजेशन में मुझे ज़्यादा साउथ का प्रभाव दिखा। जी हाँ, दक्षिण भारत की वर्षा में जो हालत होती है, यानी कि विशाल मंदिरों का जो समागम और झरने और हरे भरे खेत, ये सारा कुछ जो सीक्वेंस था वो ज़रा मुझे साउथ का फील दिया। और क्यों ना हो भाई, म्यूज़िक डायरेक्टर वो काफ़ी मतलब नामचीन है साउथ से, तो वो असर तो रहेगा ही। और प्रोड्यूसर ने बड़े कहते हैं ना, बड़े सटीक ढंग से उनके इस चीज़ को उस गीत में ढाल के निखार के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, भाई प्रोड्यूसर अगर इजाज़त नहीं देगा तो कैसे होगा, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस चीज़ को बड़े निखार के सबके सामने इन्होंने लाया। और AR रहमान की जो प्रस्तुतिकरण थी, जो गीतों का जो उन्होंने जो कॉम्पोजिशन बनाया था, दैट वॉज डेफिनेटली अमेजिंग। इस गीत को हम चाहे अगले 50 साल में 500 बार भी सुने ना, तो भी इस गीत की जो फीलिंग्स है, इस गीत का जो इफेक्ट है, ये ट्रैक का जो वो कहते हैं ना वर्चस्व है, वो नहीं कमेगा। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गुलजार एंड AR रहमान। वैसे बहुत सारे गीत ऐसे रहेंगे, बने रहिए, साथ रहिए। अभी भी हम अभी भी तकरीबन 35 मिनट है आपके साथ। मेरी कोशिश रहेगी एक से एक खूबसूरत गीत आपके सामने रखूं और आपको फील कराऊं ऑफ द कमिंग मॉनसून।

लगान फिल्म से सुना आपने ये खूबसूरत गीत और बारिश की उम्मीद को जगाता हुआ ये गीत। इसमें और कुछ भले हो ना हो, लेकिन हाँ, हमारे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता ये खूबसूरत गीत है। और गीत के जो बोल हैं सुनकर आपको बारिश से जुड़ी हर चीज़ का चित्रण समझ आ जाता है। गीत का अंत ज़रा उदास है क्योंकि बादल छटने लगते हैं और वो जो बारिश की जो उम्मीदें हैं वो कहीं खो सी जा रही है इस गीत में दिखाया गया है। वैसे लोकगीत के जो शौकीन हैं, खास करके मैं, मुझे लोकगीत और फोक सॉन्ग्स बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर गांव की मिट्टी की खुशबू बयां होती है उन गीतों में। और यही वजह है कि ये गीत मुझे इतना प्यारा है। और इस गीत के साथ पूरी तरह से, कहते हैं ना, इंसाफ किया गया है जावद अख्तर के बोल और साथ में एआर रहमान का संगीत, एक इतनी अच्छी तरह से मेल बंधन हुआ है। ये जुगलबंदी बहुत कम दिखने को मिलता है और मुझे इसीलिए लगा कि ये गीत आपको सुनाऊं। आई होप यू ऑल इन्जॉयड। फिलहाल अगला गीत हमारे किसी दोस्त ने गुजारिश की थी, उन्होंने मतलब सुनना चाहा था, हालांकि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि उनके दिल में आया तो मुझे लगा कि चलो उनके लिए ये गीत सुनाते हैं। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, अपने सभी दोस्तों के लिए ये गीत आपके लिए। और फिल्म का नाम ये दिल लगी।

0: दिल तो पागल है से आपने सुना ये गीत, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के ऊपर। वैसे इस गीत में वो बचपन की जो बचकानी हरकत, वो जो चंचलपन है वो दिखता है, और ये जो बचकानापन या ये जो शरारती अंदाज जो दिखाया गया है ये हम सब में है। हम चाहे जितनी भी मतलब इस बात को अगर कह दे कि नहीं ये गलत है, हम अब बड़े हो गए हैं, हम अब मैच्योर्ड हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी के दिल के किसी कोने में वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, विराजमान है, और वो इस बारिश को जब देखता है तो दिल में उमंगें जागती हैं, हम बच्चों के साथ खेलने निकल जाते हैं। ये बात देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि हम खुद एक्चुअली हमारा वो बचपन फिर से जीने की कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश करता है, और यही होता है कि हम बचपन को जीने के लिए उन बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। हालांकि ये एक रोमांटिक सॉन्ग था, यहाँ पे बच्चे नहीं थे, इसलिए डायरेक्टर ने इन टीनेजर्स को ही बच्चों के रूप में उनके शरारत को, उनके बचकानेपन को दिखाया। वेल दैट वाज रियली ग्रेट ऑफ द डायरेक्टर। बहुत अच्छा संगीत उत्तम सिंह के द्वारा, और लता जी ने और उदित नारायण ने जो गाना गाया है उसके बारे में क्या कहने। फिलहाल ऐसे गीत और 16 मिनट आपके साथ में हूँ, और सुनते रहिए, साथ रहिए। द नेक्स्ट ट्रैक इज फ्रॉम 3 Idiots। इस गीत के बोल शायद कहीं आपको रेन से या बारिश से जुड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक कहीं पे दिल के किसी कोने में शायर ने ये बताने की कोशिश करी है कि हमें जिंदगी में थोड़ा सा सनशाइन, थोड़ा सा रेन चाहिए। And that makes the whole life.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

दूसरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बस दोस्तों, हमने आपको ओरिजिनल का रीमिक्स सुनाया। फिल्म अजनबी का गीत हम नहीं सुना पाए, फिर भी हमने दिल विल प्यार व्यार से रीमिक्स आपको सुनाया। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आ चुके हैं, यानी बिल्कुल अंतिम कगार पर खड़े हुए हैं, कार्यक्रम का दूसरा घंटा और दूसरे घंटे के अंतिम कगार पर। और आज कार्यक्रम का अंत करेंगे वही रेट्रो सॉन्ग से। रेट्रो सॉन्ग से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आगाज किया था, और अंजाम भी हम रेट्रो सॉन्ग से ही देंगे। और अब मैं वो गीत सुनाने जा रही हूँ। इस गीत में एक बार फिर से कहूँ, रफ़ी ने मानो जान डाल दी है। जब वो कहते हैं कि बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से भी कभी आसमां मिल गया। जी हाँ, ये बारिश ही है जो जमीन से आसमां को मिलाता है। और एक इतना अच्छा ट्रैक, इस ट्रैक को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये गीत इतना अच्छा लगता है। और इस गीत को सुनाते सुनाते आपसे अलविदा कहेंगे और कहेंगे कि बारिश को एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, जाते जाते एक ज़रूरी बात, वो ये कि अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये नहीं कि बारिश है तो हम बेपरवाह बन जाएं। जी हाँ, दिल से बेपरवाह बने, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। और जैसा कि मैंने कहा कि इस गीत को सुनाते सुनाते हम आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों के मुस्कुराहट का राज बनिए। नमस्कार।